0: This is Talk 100.3.
1: आग कभी कभी रोशनी, कहीं कहीं शोर रौनकें, कहीं आग आग कहीं धुआं धुआं, कभी आस पास कभी यहां वहां, कभी शोर हो तुम कभी मौन हो तुम।

नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

0: तेरी सादगी अनमोल है, किरदार बेमिसाल है, तू जो भी है लाजवाब है, तू ख्याल है या एक सवाल है, तेरे सामने जो भी आएगा उसे तुझसे प्यार हो ही जाएगा।
1: This is Talk 100.3.

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

0: Joining us right now in this conversation, we are joined by the man himself. He is none other than Dinesh Lad, the childhood coach and lifelong mentor of Indian cricketer captain Rohit Sharma. It is Rohit Sharma's birthday today. So, sir, aapke baare mein humne itni cheeze suni hai, and if you can just talk to us a little bit ki aapne jab pehli baar Rohit mein, Rohit Sharma ko jab aapne dekha, aapne aisi kaun si cheez unme dekhi ki aapko ye laga ki aage chalkar ye jo ladka hai world cricket pe raj karega.
1: Basically maine jab isko dekha tha 12 saal ka tha, but us waqt maine usko as an off-spinner dekha tha. क्योंकि मुझे स्कूल के लिए बच्चे जाएगा, जैसे मैंने उसको देखा मैच में तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट हिज एक्शन. तो इमीडिएटली मैंने उसे बुला के पूछा कि तू कौन से स्कूल में है, उसके पेरेंट को मिलने बोला. अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट यहाँ नहीं, जहाँ पर वो खेल रहा था वहाँ पर नहीं रहे थे, वो लॉन्ग वे रहते थे, वहाँ से 2.5 hours कर गए. बट वो अंकल के घर पे रहता था, तो उसमें मैंने अंकल को बुला के बोला कि ये लड़का मुझे अच्छा लगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको लेके आइए स्कूल में. तो स्कूल में एडमिशन करवाया, देन एडमिशन करके फर्स्ट ईयर ही प्लेड एज ऑफ स्पिन बॉलर. बट नेक्स्ट ईयर मैंने जब उसको नॉक करते हुए देखा तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि ये लड़का बैटिंग में अच्छा कर पाएगा. सो आई टोल्ड हिम टू फोकस ऑन योर बैटिंग मोर.
0: सो
1: एंड उसके पास टैलेंट तो था ही उसके पास, मैंने कुछ किया नहीं. फिर मैंने उसको एडवाइस किया कि तुझे बैटिंग में ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए.
0: But again, you know, just a small little boy, 12 year old, who doesn't really know much, who is thinking he'll do good in bowling, but आपने कहा कि आप batter भी बन सकते हो. और I think कहीं पे I've read that you have also forgiven couple of his school fees. तो ये जो किस्सा है हमें please सुनाइए कि क्या किस्सा था, what was it?
1: मैंने नहीं पे फीस का पे किया था, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि जब एडमिशन के लिए हम लोग गए डायरेक्टर सर के पास, उन्होंने फॉर्म देने के लिए कहा, जब हम लोग नीचे आए तो उसके अंकल ने मुझे क्वेश्चन किया कि सर फीस कितनी. तो हमने कहा कि देखते फीस कहाँ, फीस काउंटर पे 275 rupees फीस थी. तो जैसे उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा सर थैंक यू सर, इतना तो फीस हम लोग भर ही नहीं पाएंगे, जो स्कूल में जा रहा है उसको 30 rupees फीस है. तो मैं बोला प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं दो मिनट रुको आप. फिर से मैं हमारे डायरेक्टर सर के पास, योगेश पटेल जी थे उस वक्त, उनके पास गया, उनको कहा कि सर आपने एडमिशन तो कंफर्म किया है बट मेरी एक रिक्वेस्ट है. उन्होंने सर उन्होंने कहा कि सर इसको फ्रीशिप दिया जाए. तो पहला बच्चा था जिसके लिए मैंने फ्रीशिप मांगा था, बिकॉज की टैलेंट लगा था मुझे, स्कूल को बच्चे भी चाहिए थे. तो इमीडिएटली सर ने उसके फॉर्म पे लिख के दिया ग्रांटेड फ्रीशिप. यदि अगर उस टाइम फ्रीशिप नहीं दिया होता, आई डोंट नो कि रोहित क्रिकेट कंटिन्यू करता था, बिकॉज कि उनके पास फीस आने के पैसे भी नहीं थे उसको.
0: तो If I have to look at an overall thing, right, Dinesh sir, I mean, from the gullies of Mumbai, Borivali mein, all the way to becoming the captain of Team India, that would have been a very proud moment for you. So talk to us a little bit more about Rohit Sharma. Kaise the wo bachpan mein? How was he as a budding cricketer in comparison to ab jab aap unko dekhte ho bade parde pe? What do you feel, what do you make out of it?
1: एक्चुअली क्रिकेट में बहुत सिंसियर था, बहुत टाइम लेता था, यानी जितना प्रैक्टिस जितना उसे करना था उससे ज्यादा प्रैक्टिस करता था एंड फोकस था. और उस वक्त और मैं आपको एक बात बताऊँ, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था शुरू से क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट उसके इतने इस मुकाम पर पहुंचे. लेकिन आपको एक मैं किस्सा बताता हूँ, तो इसी तरह की हम लोग अंडर-19 मुंबई के लिए सिलेक्ट हुआ था. उस वक्त अंडर-19 टीम को, मुंबई के स्टेट टीम को 10,000 rupees पर मैच मिल गया था. और हम लोग ऐसे रस्ते पे खड़े थे तो एक मर्सिडीज गाड़ी उसमें देखे, मुझे बोला कि सर मैं गाड़ी लूंगा. मैंने कहा तो पागल है, गाड़ी की प्राइस पता है 10,000 rupees तो मिलने जा रहे, तो गाड़ी की कोई कर, मैंने 100% में लूंगा. सो मेरा कहना ये था कि वो कॉन्फिडेंस उसका बहुत आया था, ये नोज कि मैं आगे जाके कुछ एक अच्छा क्रिकेटर बनूंगा, अच्छा क्रिकेटर बनने में पैसा कमाऊंगा, ये उसके माइंड सेट में था ही. और उसके लिए वो इतना पहुंच गया. मुझे पता है कि जब उसे वर्ल्ड कप टीम में लिया गया 2007 वर्ल्ड कप टीम में T20 फर्स्ट वर्ल्ड कप, तो उस वक्त उससे पहले 3-4 मैच वो खेला नहीं था. तो मुझे पहले फोन कर रहा था, सर पट गया हूँ, क्या चालू है, मेरे को खेलने को नहीं मिल रहा है. मैंने अरे तू इंडियन टीम में जा रहा है, तो गली क्रिकेट नहीं खेल रहे, चांस मिलेगा तो अच्छा करके बताना। उस वक्त मुझे उसने बताया था सर मुझे चांस मिला तो मैं आप देखो मेरा मेरा नाम आगे आएगा उसमें। एंड एक्चुअली वैसे हुआ जब साउथ अफ्रीका उसने मैच खेला और स्कोर 50 डेब्यू में उसने 50 किए गए उस मैच में एंड एक रन आउट अच्छा लिया तो लाइम लाइट में तब से आ गया रोहित शर्मा। एवरीबडी नो रोहित शर्मा को हम मिले।
0: तो ये जब किस्सा हुआ व्हेन यू सीन हिम ऑन द बिग स्क्रीन, अब ऑल द वे फ्रॉम द कैंप टू द बिग स्क्रीन और टू मेकिंग इट टू द इंडियन यू नो टू द इंडियन टीम, प्लीज टॉक टू अस अबाउट दैट जर्नी और आपने कितना साथ दिया उनका, ऑल्सो द पेरेंट्स ऑल यू नो बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे हम डे टू डे जो हमारे एक्सपेंसिस है वी मार्क दैट एंड वी वर्क अराउंड, बट यू नो हाउ डिड यू स्पीक टू हिज पेरेंट्स, हाउ डिड यू वर्क विद रोहित शर्मा कि आप कर सकते हो, डजेंट मैटर आपके जेब में 5 रुपए भी अगर हो और यू नो कॉन्फिडेंस हो तो यू कैन मेक इट टू द टीम, इट डजंट मैटर।
1: डेफिनेटली, बट आई एम थैंकफुल टू हिज अंकल फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसके रवि अंकल करके थे, तो उनको थैंक्स कहना चाहूंगा बिकॉज कि उन्होंने वो डिसीजन ले रखी, उसके पेरेंट तो रोमोली रहते थे फार थे यहाँ के बोरोली से, तो उन्होंने डिसीजन लिया ही नहीं। रवि अंकल को मैंने समझा कि बच्चा अच्छा है अच्छा खेलेगा एंड जब वो 10th स्टैंडर्ड में तभी मुझे लगा कि ये लड़का आगे जाके बहुत हंगामा करने वाला है बिकॉज कि जिस तरह से वो बैटिंग करा था जब 16 साल का हुआ था जब ऑलमोस्ट उसने 10-11 100 किए थे स्कूल क्रिकेट में, तो मैंने तभी बताया था कि ये लड़के को प्रमोट करना जरूरी है, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। एंड अनदर थिंग कि उसके मम्मी डैडी जहाँ पर रहते डोंबिवली, मम्मी डैडी बहुत स्कूल लाइफ जी रहे थे थोड़ा बिकॉज डैड का उनके जॉब गया था कंपनी बंद हो गई थी, तो मेरे पास आके मुझे कहने लगा कि सर बहुत प्रेशर है, जब भी अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए जा रहा था, मैंने उसको कहा तू प्रेशर देना बंद कर दे, तू तेरा क्रिकेट के ऊपर ध्यान देना। तो मैंने उसके डैड को फोन करके बताया, बाकी में उनके फोन था किसी के पास, तो उनको बताया कि डैड को बोला तो आप मुंबई में आ जाओ मैं सब करवा देता हूँ आप। तो फिर मैंने बिल्डिंग में हमने रेंट पे जगह ली और उसके मॉम डैड आ गए और मैंने कहा ना कि वो बहुत कॉन्फिडेंट लेवल का लड़का था, जिस तरह से वो प्रैक्टिस करता था बहुत। मैंने आपको एक और एक बात बता दो, जब स्कूल की मैच चलू थी 40 रन हम लोग चेस कर रहे थे, हम लोग 34 विकेट थे, रोहित बैटिंग कर रहा था, तो मैंने मैसेज किया कि भेजा उसको कल मिल के कि रोहित किसी पहले मैच जीतना चाहिए अदरवाइज हम लोग बाहर जाएंगे, हमको क्वार्टर फाइनल में जाना है टीम। तो उसने उस वक्त उसे रिप्लाई भेजा मुझे कि सर को बोलो मैच जीत जाएगा डोंट वरी हम लोग मैं, और उसने 161 रन की वो पारी के लिए, यानी बहुत कॉन्फिडेंट लगता था। थोड़ा बीच में एक प्रॉब्लम हो गया था इन द सेंस कि जब 2009 में वो बोरली में था तब रेगुलर प्रैक्टिस करता था मेरे साथ, रेगुलर फोन कर रहा, मेरी बिल्डिंग में रहता था
0: जी,
1: रेगुलर मुझे फोन कर रहा सर कहाँ पर हो चलिए आ जाओ प्रैक्टिस करना है, यानी वर्ल्ड कप खेलने के बाद भी रेगुलर था। बट अनफॉर्चुनेटली वो शिफ्ट हो गया पैंड्रा में और पैंड्रा में जाने के बाद थोड़ा डाइवर्जन हो गया था सर क्रिकेट में, थोड़ा टाइम नहीं दे रहा था वो पैंड्रा का एटमोसफेयर तो आपको तो पता है ना।
0: जी जी बिल्कुल, मैं भी मुंबई से उसके लिए।
1: ओह ग्रेट ग्रेट। तो मैंने फिर उसके बाद 2009 से 11 तक उसका परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो गया था, तो एंड 2011 के वर्ल्ड कप में उसको मौका नहीं मिला, विराट कोहली उसके बाद आने के बाद विराट कोहली टीम में आ गया था, सो ही केम टू मी बोला क्या सर मेरे को लेना चाहिए था, वर्ल्ड कप था, मैं इतना कर अच्छा कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें परफॉर्मेंस क्या देखना, तुझे मौके मिले लेकिन तू परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, खराब परफॉर्म, तू टाइम कितना दे रहा है क्रिकेट को, अगर तू टीम क्रिकेट को टाइम नहीं दिया तो तू आगे नहीं जाएगा, तेरे को टाइम देना ही पड़ेगा क्योंकि। तो उसने उस वक्त मैंने कहा सर मेरी बहुत बड़ी गलती होगी बट आज के बाद मैं इतना टाइम दूंगा आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा एंड डेफिनेटली। और उसने यही किया कि उसने वहाँ पर तो बीकेसी जाके सुबह 6 बजे जाना, शाम को 5 बजे तक उधर ग्राउंड पे रहना, ये जो टाइम दिया, और आपने देखा होगा कि उसके बाद उसका ग्राफ कभी डाउन नहीं हुआ है बिकॉज उसने उसके बाद 3 डबल सेंचुरी किए हैं, वनडे में उसने अपना टेस्ट क्रिकेट में उसने डेब्यू में 100 किए है, T20 में अच्छा परफॉर्म किया, दैट टू बिकॉज उसने टाइम दिया क्रिकेट में और उसके बाद उसने प्रॉपर टाइम दे के वो इतना अब तक पहुँच गया।
0: वेरी इंटरेस्टिंग सर, रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है लेकिन आपने यू नो उन्हें एज अ बॉलर स्टार्ट किया था, उन्हें बैटिंग पे फोकस करने के लिए कितना कन्विंस करना पड़ा आपको, और क्या यू नो इट वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम और वाज इट वेरी वेरी इजी?
1: नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली वो बैटिंग करता ही था, बट मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि मेरा कोचिंग का स्टाइल थोड़ा अलग है. मैं बॉलर्स को ज्यादा बॉलिंग करवाता हूँ, बैटर्स को ज्यादा बैटिंग करवाता हूँ. एंड उस वक्त मैंने फॉर्चुनेटली मैंने उसको नॉकिंग करते हुए जिस तरह से मैं नॉक कर रहा था तो मुझे लगा यार इसमें टेक्निक बहुत अच्छा लग रहा है, इजी खेल रहा है, तो मैंने उसको इमीडिएटली नेक्स्ट में बैटिंग करने भेजा. और जिस तरह से बैटिंग किया तो मेरे लिए नहीं आया तो उसको बैटिंग में ज्यादा फोकस करना. देन आई सेंड हिम इन ओपन इनिंग हमारे स्कूल के मैच में, स्कोर 140 रन फर्स्ट मैच. सो उसके बाद मैंने उसको तो मैच टू मैच बैटिंग में करना, उसको बैटिंग का शौक था बट मेरी गलती थी कि मैं उसको देखा नहीं था बैटिंग करते हुए. बट जब देखने के बाद मैंने उसको लेते हुए बैटिंग, और बाद में हम लोग हमारे पास सीमेंट विकेट थी तो सीमेंट विकेट में मैं खुद उसको बॉल डालता था. और मैंने तो यही कहा ना कि उसका टैलेंट था ही था, खाली उसको बताना था कि ये तेरे पास टैलेंट है और कॉन्फिडेंट लेवल पे उसका हाई था. तो डेफिनेटली उसने अपने आप को अपने खुद के ऊपर फेथ रख के इतना बड़ा प्लेयर बन गया.
0: सर जब रोहित शर्मा, आई एम श्योर इट हैज हैपेंड इन द पास्ट एज वेल, कभी भी फॉर्म से बाहर होते हैं तो क्या वो आज भी आपके पास टेक्निकल एडवाइस के लिए आते हैं और आप वो क्या एडवाइस देते हो उनको?
1: देखिए मैंने जब वो इंडिया खेलने के बाद मैंने कभी उसको एडवाइस नहीं दिया. मैंने कहा ना कि जब 2009 to 2011 में जो पार्ट था वो दो साल का, उसमें उसका जो खराब परफॉर्मेंस हुआ था मैंने सिर्फ उसको यही बताया अगर तो टाइम नहीं देगा तो डेफिनेटली तो बाहर ही जाएगा, रोहित शर्मा को भूल जाएंगे सर, यही कहा था. बाकी टेक्निकली आई नो इट, टेक्निकली वो परफेक्ट बैट्समैन था शुरू से, जब से मैंने देखा तब से शुरू से, कभी मैंने उसको कहा ही नहीं कि देखो ये करने. हाँ एक वक्त जब 2019 का वर्ल्ड कप था जब यूके में, तभी मैंने खाली उसको एक एडवाइस किया था कि तू बहुत ज्यादा अटैकिंग खेलने जा रहा है तो तू थोड़ा विकेट पे रुकने की कोशिश कर, पहले 10 ओवर तो विकेट पे रुकना. और आपको तो पता होगा उस वक्त उसने 500 किए थे वर्ल्ड कप में, तो वही एडवाइस दिया था. बाकी मैंने टेक्निकली कभी उसको बोला ही नहीं कि तुमको ये टेक्निक तेरा गलत है, क्योंकि टेक्निकली वो साउंड ही था और अभी भी साउंड ही है.
0: यू नो हम रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं और काफ़ी लोग कहते हैं कि यू नो ही इज़ अ वेरी कूल कैप्टन, बट हमको पिच पे अलग ही नज़र आती है चीज़ें. यू नो वी सीम एज कॉमेंट्री तो चलती है ऑन द स्क्रीन, बट उनकी जो कॉमेंट्री चलती है बिहाइंड द स्टंप माइक्स या यू नो अमंग्स्ट द अदर प्लेयर्स, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट एंड इट हैज़ अ वेरी मुंबई लैंग्वेज टू इट. हैज़ ही ऑलवेज बिन दिस वे? ऐसे ही था, क्योंकि आई फील he's never gotten out of the Borivali lanes and that's why I can connect to him even more.
1: Yes, yes, definitely. Uska language to training wise the kya bhai kya karta hai bhai chale baat kar chal kya kar rahe ye similar language abhi, but to apne players ko confident bhi bahut acha acha hai because of that uska jo overall under captaincy performance hai wo upar hi tha, kyunki bahut sare matches mein jeeta ke liye kyunki he knows पर्टिकुलर एक बॉलर है तो बॉलर को जाके भले उसको गलत तरीके से बोलना है बट उसको ये नो कि ये अगर इसको मैंने समझाऊंगा, इसको मैंने कॉन्फिडेंट दूंगा तो ये मेरे को मैच जिता के देगा. तो डेफिनेटली वो वैसे ही कर रहा था और उसके वजह से आपने देखा होगा आईपीएल में उसने 5 बार उसने आईपीएल जीता है, एशिया कप जीता है, वर्ल्ड कप जीता है. खाली उसका एक ही ख्वाब है कि उसके हाथ में वर्ल्ड कप देखना है, 50 वर्ल्ड कप हो जाए. दैट इज वाई इज प्रिपरेशन फॉर दैट.
0: और कितना ज़रूरी है फॉर अ प्लेयर, फॉर अ एथलीट टू लीव द स्पोर्ट यू नो एट एन ऑल टाइम हाई? आपने हाल ही में कहा कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, यू नो इसके लिए फैंस जो है हमारी तरह आपके पास आते हैं पूछने के लिए कि इज इट इवन पॉसिबल एंड फॉर हिम टू प्ले द 2027 वर्ल्ड कप व्हाट इज इट दैट ही नीड्स टू बी वर्किंग बिसाइड्स हिज फिटनेस? वी हैव सीन कि काफ़ी फिट हो चुके हैं रोहित शर्मा, शुड ही बी वर्किंग ऑन एनी स्किल एनी टेक्निक? And we are really missing him, part of the Mumbai Indians team of late. So please, what is it that he should be doing
1: now? Yeah, definitely. Because of some injuries, he's not playing, but he's working hard. He's बहुत hard work कर रहा है. Because मैंने कहा ना कि उसको T20 अपने One Day World Cup खेलना ही है और इसके लिए fit रहे ना. Otherwise, वो immediately resign कर देता ना. One Day से international भी resign होंगे. Because उसने सिर्फ Test cricket and T20 में से उसने बाहर निकला है, बट वनडे के लिए उसने कभी बोला ही नहीं. एंड वो प्रिपेरेशन कर ही रहा है 2027 का वर्ल्ड कप, बिकॉज 2019 के वर्ल्ड कप उसके हाथ से निकल गया था बिकॉज वी लॉस्ट इन सेमीफाइनल. 2023 का वर्ल्ड कप हम लोग फाइनल में हार गए थे क्योंकि उसके हाथ में अभी ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप दो बार आया है, टेस्ट चैंपियनशिप जो जीते थे जब धोनी था धोनी, तो उसके हाथ में उसको देखना है अपने खुद के हाथ में वर्ल्ड कप. So I'm preparing for that.
0: And that is something we as a fan also want to see, not just in his hands, but for the ones that absolutely love Rohit Sharma. Dinesh sir, aapke jaane se pehle, you know, we also understand that you run Dinesh Lad Cricket Foundation. Ab ye jo sawal hai, I'm sure you would have heard this so many times, ki agla Rohit Sharma yahan se kab niklega? What is the question? What is the answer to that? Kya kabhi hoga? Will there be another Rohit Sharma?
1: डेफिनेटली होगा. अभी मेरे पास जो मैंने बच्चे अडॉप्ट किए हैं ऑलमोस्ट 22 बच्चे अडॉप्ट किए हैं, उसमें चार लड़कियां भी है, बट जो बच्चे हो 9 साल और 10 साल के बच्चे हैं, एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, नॉट रोहित शर्मा बट जस्ट सिमिलर टू हिम मेरे पास है कोई बच्चे. मैं अभी नाम तो नहीं लूंगा उनका, बट डेफिनेटली अगर वो बच्चे फोकस रहेंगे, उनके पेरेंट्स अगर पेशेंस रखेंगे, तो डेफिनेटली आई एम होपफुल कि ये उसमें से कोई तो एक जस्ट सिमिलर टू रोहित शर्मा बन सकते हैं.
0: Wow. And we are waiting, sir, to have this conversation with you. In fact, the young cricketers that we are seeing, and obviously IPL has given us that podium to see some great youngsters coming forward as well. Ek jo naam, mujhe yaad hai, is Vaibhav Suryavanshi. What do you think of that small little kid when you see him on the screen?
1: अबाउट वैभव ऑलरेडी टॉक अबाउट हिम, मैंने कहा कि वो अजूबा है जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, जो कॉन्फिडेंट उसका है, जो मैंने उसका कॉन्फिडेंट लेगा उसके अजूबा में कोई नहीं अभी फिलहाल. बट हाँ, इट्स अ T20 क्रिकेट, बट जब मैं उसको देखूंगा टेस्ट क्रिकेट में, जब टेस्ट क्रिकेट में अगर आएगा, टेस्ट क्रिकेट में अगर इस तरह से अगर परफॉर्म करेगा, तो आई थॉट आफ्टर सचिन तेंदुलकर मैं उसको बोलूंगा कि एक अजूबा जन्मा हुआ है इंडिया में.
0: क्या
1: बट मुझे उसको रेड बॉल क्रिकेट में देखना है. अभी फिलहाल तो T20 क्रिकेट में उसकी जैसे बैट्समैन मैं देख ही नहीं रहा हूँ जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, जो कॉन्फिडेंस है और जो कॉन्फिडेंस है वो सीनियर लोगों को भी नहीं इतना मार रहा है, मुझे अजब लग रहा है वो चीज. एंड डेफिनेटली अजूबा है, बट यस, जब वो रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा करेगा तो आई एम कंपेयरिंग हिम विद सचिन तेंदुलकर.
0: Sir, thank you very, very much. Aapke wajah se, your hard work has paid off, not just in form of Rohit Sharma, but you have given India such a beautiful talent. Thank you very much.

0: यार मैं बस दरवाजा बंद करके, खिड़कियां बंद करके अकेले बैठ जाऊं, मुझे कुछ नहीं करना है, समझ में नहीं आ रहा है। और करियर की बात है, और संजू सैमसन के आगे न जाने कितने और साल पड़े हैं, पर ऐसे टाइम पर किसी एक सीनियर प्लेयर को फोन उठा के करना कि मुझे आपसे हेल्प चाहिए, मुझे बताइए, उसके लिए भी तो जिगरा चाहिए ना अमित भाई।
1: जिगरा तो मैं कहता हूं, आप थोड़ी देर के लिए आप जो आपको रूम में बंद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: ओके.
1: ये नहीं कि आप पूरा टाइम बंद रखो, आप आधा पौना घंटा अपने आपके बारे में सोचो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो वो जिगरा होना। और ये अच्छी चीज है कि हमारे मेरे जो जितने भी सीनियर, सचिन पाजी हो गए या वीरू भाई, जितने भी मेरे सीनियर थे, मेरे लिए मतलब मैं जब भी उनको फोन या मैसेज करूँ या मैं बाहर भी बैठता तो सब यही बोलते थे कि यार डोंट वरी, यू आर डूइंग वेल, तुम्हारा भी टाइम आएगा, तुम जस्ट अपने टाइम का वेट करो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने फोन किया, वो जिगरा होना चाहिए, और उधर से भी वही रिप्लाई आना,
0: बिल्कुल,
1: वो भी एक बहुत बड़ी बात है। पहले मैंने तो बहुत कम देखा, जब मैंने स्टार्ट की थी तो कई ऐसे प्लेयर थे, मतलब नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बट रणजी ट्रॉफी प्लेयर ही थे, वो ऐसे एटीट्यूड में रहते थे कि उनसे बात करना भी डर लगता था बहुत ज्यादा कि हम पास जाए ना जाए। अब मैं अपने चाइल्डहुड की बात
0: नहीं,
1: मैंने
0: बिल्कुल
1: स्टार्ट करी तो, लेकिन उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, मेरे सीनियर इतने अच्छे थे, इवन सचिन पाजी ले लो, अनिल भाई ले लो, एनीबडी, व्हेनेवर यू वांट टू टॉक दे आर अवेलेबल टू लाइक हेल्प यू एनी टाइम।
0: क्या बात है। इनफैक्ट संजू ने ये भी कहा कि सचिन पाजी ने बकायदा फाइनल्स के पहले उनको फोन किया, जबकि घर में इतनी बड़ी शादी हो रही है, शादी का माहौल है, उसके बावजूद टाइम निकाल के संजू को फोन करना फाइनल्स के पहले, ये बहुत बड़ी बात है। एंड सौभाग्य है हम सबका कि हमारे बीच में ऐसे प्लेयर्स भी हैं।
1: अरे बिल्कुल, देखिए ना आप, मैं तो ये कहता हूँ कि सीनियर प्लेयर को मैं हमेशा क्यों कहता हूँ, सचिन पाजी इतने सीनियर प्लेयर, इतनी जगह रन बनाए, इतना एक्सपीरियंस है, संजू सैमसन अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद भी उनसे बात कर रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: उनको फोन किया जा रहा है, तो मतलब उनको भी उनके ऊपर ट्रस्ट है, सचिन पाजी को भी उनका ट्रस्ट है कि भाई एक सीनियर प्लेयर का होना, वहां पे खड़े रहना, 7-8 ओवर भी खड़े हो जाए तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने यही बात की होगी, यू जस्ट बी देयर, रन अपने आप आ जाएंगे, मुझे 100% आई एम श्योर। सीनियर प्लेयर को ना ज्यादा दिक्कत नहीं होती है जब वो खड़े होते हैं, उन्हें पता है बस कि थोड़ा एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, सीनियर प्लेयर वो जल्दी कर लेते हैं और अपने साथ दूसरे प्लेयर को भी बता देते हैं कि भाई ये एडजस्टमेंट कर लो, थोड़ा सा कर सकते हो तो थोड़ा इसकी वेट कर लो, ये बॉल थोड़ा स्लो आ रहा है, विकेट में थोड़ा बाउंस ज्यादा है, थोड़ा बैक फुट पे खड़े हो जाओ, तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस ना सामने बैठ के सीनियर वाला प्लेयर बता सकता है आपको।
0: अनडाउटली, और ये हमने देखा जिस तरह से पारी बढ़ती गई, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 290-300 बन जाएंगे जिस तरह की बैटिंग चल रही थी, और फिर आया जिमी नीशम का वो एक ओवर, 3 विकेटें 1 रन, मैं हम कमेंट्री कर रहे थे, मैंने कहा भाई क्या करें, माइक रख दे नीचे। ऐसा ऐसे जब गेम में पड़ाव आते हैं, जब ऐसा टाइम आता है, जब मोमेंटम के बिल्कुल विपरीत कुछ हो जाता है, तो तब माइंडसेट क्या होता है प्लेयर्स का?
1: नहीं, उस टाइम पे यही होता है कि आप जाके सिचुएशन को समझो, और समझे के बाद जैसे कल एकदम से 3 विकेट गिरे, उसके बाद तिलक वर्मा को भेजा गया कि भाई थोड़ी सी पार्टनरशिप कर दे, और वही हुई, दोनों के बीच थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई, उसके बाद वापस दुबे आए, दुबे ने वो आते ही एकदम गेम चेंज कर दिया, वो एक ओवर के अंदर चेंज कर दिया गेम। तो यही होता है, मैं यही कहता हूँ गेम अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और मुझे तो पता था 270 तो नहीं बनेंगे, बट जहां मैंने कहा 220 के ऊपर जितना भी गया स्कोर हमारे लिए प्लस है।
0: दुबे जी के बारे में आप कल भी कह रहे थे कि भाई वो एक लड़का है जिसका पोटेंशियल बहुत अलग लेवल का है, आखिरी ओवर में 24 रन्स, और उसी जिमी नीशम को जिसने 3 विकेट ली थी 1 रन देकर, यहाँ पर जो exactly. है एक मोमेंटम बन गया भारत के लिए।
1: मैं तो ये कह रहा हूँ ना, क्योंकि प्लेयर पहले जब मैंने उनको कई बार आईपीएल में आउट किया है, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, वैसे बोल रहा हूं, लेकिन मैंने पिछले 1-2 साल के अंदर मैंने उनको बोला, देखा ना जब मैंने, तो उस लड़के के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, एक तो वेट कम करा, फिटनेस लेके आए, और सबसे अच्छी बात ना क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं
0: राइट,
1: और पहले शॉर्ट बॉल में दिक्कत होती थी, शॉर्ट बॉल को छक्का मारने नहीं जा रहे, नीचे मार के बाउंड्री गैप में मार के बाउंड्री ले रहे हैं, अपनी बॉल का वेट करते हैं, जैसे उनको ऊपर मिलती है छक्का मारते हैं, तो ये मैच्योरिटी उनके अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर मैंने देखी है, और सबसे बड़ा क्या भूख है उस बंदे के अंदर कि मुझे कुछ करना है, मुझे दिखाना है लोगों को, तो वो चीज उसके अंदर दिखती है, और क्रिकेटिंग शॉट जिसके पास होंगे ना, आप संजू सैमसन को भी देख लीजिए, कोई भी रिस्की वाला शॉट्स नहीं खेला उन्होंने, तीनों इनिंग में सारे क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, तो ये एक पता लग जाता है प्लेयर की एबिलिटी का, जब क्रिकेटिंग शॉट्स मार के रन बना सकता है तो उसको और किसी मतलब बॉलर के ऊपर कभी भी डोमिनेट कर सकता है वो प्लेयर।
0: बिल्कुल डोमिनेट किया, और जिस तरह से किया, इतने सारे रन्स बन गए, बॉलिंग करने जब भारत आई तो फिर ऐसा ही था कि ये यहाँ पर बस हमने कंट्रोल करना है इस ओपनिंग पैर को, क्योंकि फिन एलन आप भी कह रहे थे, टिम साइफर्ट, ये जो ओपनिंग पैर है बहुत तगड़ी पैर है, मिडिल ऑर्डर न्यूजीलैंड का वीक था और वो खुल के आ गया कल भी।
1: हाँ बिल्कुल।

0: देखिए फाइनल खेल रही है, मैंने पहले कहा था ये फाइटर प्लेयर्स है, ये फाइट करते रहेंगे जब तक टीम में, लास्ट में बिल्कुल इन्होंने छोड़ दिया जब कुछ भी नहीं रह गया उनके पास, लेकिन जब तक ये खड़े रहेंगे ना तो फाइट करते रहते हैं, ये इनके अंदर एक अच्छी चीज है। कभी भी आप देखो, मैंने हमेशा बोला है कि ब्लैक कैप्स को मैंने जब भी देखा है ना, बेशक से उनके पास लिमिटेड सोर्सेस ऑफ होती है, बट इस बार बहुत अच्छी टीम थी उनकी। पहले इतनी अच्छी टीम नहीं होती थी, लेकिन तब भी फाइट करते थे, अपने अपने लिमिट में रहते थे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो होती है T20 के अंदर, उनको पता है उनकी लिमिट क्या है, तो उसी लिमिट में रहते और उससे बियॉन्ड करने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन फील्डिंग में 200% देते थे अपना कि भैया फील्डिंग में हम एक रन आउट कर लेंगे, फिट हैं, एक दो कैच पकड़ लेंगे, एक दो अच्छे ओवर गिर गए, एक दो कैच पकड़ ली, वहीं मैच चेंज हो जाता है, 20 रन रोक लिए फील्डिंग में, वहां चेंज हो जाता है गेम। तो इनके अंदर हमेशा वो थी, लेकिन इस बार टीम भी अच्छी थी और फाइटर तो ये है ही, बट हमने उनसे ज्यादा, मैंने पहले कहा था हमारे पास ऐसे प्लेयर है, ऐसी सोच के प्लेयर है जो मैच को कभी भी चेंज कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस भी जाता है, प्लस इंडिया होम का जो सपोर्ट था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको बोला था कि वो सेंटनर ने खाली माइंड गेम खेला है
1: जी,
0: बाकी इंडिया ने जैसा मैंने कहा वो एक फोकस किया गेम के अंदर, आपने देखा कि कोई ऐसा बहुत ओवर ट्राई नहीं करा, फील्डिंग में अच्छे एफर्ट कर रहे थे कल, बॉलिंग में भी एक जगह पे बॉल, एक तो हम आप 120 बॉल डालेंगे, दो चार बॉल ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन फोकस बहुत अच्छा था, जगह पे डाल रहे थे, ज्यादा ट्राई नहीं कर रहे थे, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन भी नहीं कर रहे थे किसी चीज का, फोकस बहुत ज्यादा थे, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
1: हम आपने बॉलिंग की बात करी कि बॉलिंग में 120 गेंदे करते हैं, पर 120 गेंदों में से जब 24 गेंदे जसप्रीत सिंह बुमराह कर रहे हो तो वो गेम अपने आप में पलट जाते हैं।
0: जीनियस जीनियस भाई, वो मैं तो खाली उनका यही बोल सकता हूँ, उनकी मेहनत, मैंने तो मेहनत करते हुए देखा है उनको।
1: जी बिल्कुल।
0: उसके बाद एक्सपीरियंस, उसके बाद मतलब आप बगैर मेहनत नहीं बन सकते इतने बड़े बॉलर, मतलब और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जीनियस प्लेयर हो गया, उन्हें पता लग जाता है विकेट में एक दो बॉल डालते हैं, उन्हें पता लग जाता है किस टाइप की मेरी कौन सी बॉल किस बॉलर को, और प्लानिंग बहुत अच्छी करके आते हैं, मुझे लगता है कि जाके वीडियो देखते हैं, प्लान करते होंगे कि कौन से बैट्समैन को मेरी कौन सी बॉल इफेक्टिव होगी, वो बॉल डालते हैं। सबसे बड़ा पता है क्या, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी सिर्फ मेहनत से आती है, यॉर्कर, स्लो यॉर्कर, डिपिंग यॉर्कर, स्लो बाउंसर, बाउंसर, तो बगैर मेहनत नहीं आती, मेहनत मैंने करते हुए देखा है, इसलिए वो बॉलर आज नंबर वन है।
1: आपने जो बात कही थी मुझे बहुत बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब शुरुआत में आए थे तो सिर्फ अंदर डालते थे गेंद, आपने कहा था कि जब बाहर निकालना शुरू करेंगे तो फिर अलग लेवल हो जाएंगे, और
0: अब उसके बाद तो और चीज और ऐड कर दी ना अपनी बॉलिंग के अंदर, स्लो यॉर्कर, स्लो ये कटर्स, स्लो बाउंसर्स, यॉर्कर में भी दो तीन होती है उनकी, मतलब एक अंदर भी तेज आती है और एक सीधी जाती है, तो इतनी चीजें ऐड कर दी उन्होंने अपनी बॉलिंग के अंदर और मेहनत करी है उसके ऊपर, ऐसा नहीं है कि सोचा और हो गया मैंने मेहनत करते हुए देखा है उनको, मलिंगा के साथ देखा है, मलिंगा से मैं एक बारी बात कर रहा था तो वो बोल रहा था कि उसको जब मैं बोलता हूँ कि 12 यॉर्कर डालनी है तो उसकी 10 बॉलें यॉर्कर गिरती है और मेहनत करता है, मेरे से कंटिन्यूस बात करता रहता है।
1: देखिए कल भी 21 गेंदे जो थी वो स्लोअर वन थी, विकेट समझ गए थे कि क्या यहाँ से निकालना है, कैसे निकालना है, और तुरंत ही पहली गेंद स्लोअर वन करी, विकेट उस पर मिली, और उसके बाद में आप देखें जो आप कह रहे थे स्लोअर यॉर्कर्स, बैक टू बैक स्लोअर यॉर्कर्स पे विकेटें निकाली हैं जसप्रीत बुमराह। आई मीन मुझे लगता है कि जो सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ बेस्ट बॉलर ही नहीं है, नेशनल ट्रेजर है, तो बात उसमें कोई गलत बात नहीं है उसमें, है कि नहीं?
0: नहीं बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लास्ट सेमीफाइनल में बॉल डाली तो जो 12 बॉलें डाली, दो ओवर डाले और ये यहाँ पे डाले ओवर, ऐसी विकेटों पे बॉल डालना कोई आसान बात नहीं है, तो और ये नहीं है कि एक दो बार कर रहे हैं, इतने सालों से करते आ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबके बस की बात नहीं होती है, प्रॉब्लम ही होती है कि कई बॉलर ना आके दो तीन सीरीज में करते हैं फिर नहीं कर पाते, लेकिन ये बंदा पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यूस करते हुए आ रहा है, तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
2: The best of TSB on Talk 100.3.

0: देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हो जाए
0: हो जाए।

0: टीम में आ जाते हो ना, जैसे मैंने कहा तो एक टाइम के बाद आपका बोलिंग सबको पता लग जाती है, आप क्या ऐड कर रहे हैं अपनी बॉलिंग में मेहनत से।
1: जी
0: जितना आप ऐड करते रहेंगे अपनी बॉलिंग में, मतलब वो कहते हैं ना कि एडिशन क्या ला रहे हैं, नया कुछ क्या ला रहे हैं, वो बुमराह के अंदर मैंने देखा, तभी वो नंबर वन बॉलर बने हैं। और एवन की मैंने देखा पहले हमारे टाइम पे, जो मतलब मेरे से तो सीनियर थे जैक भाई,
1: जी
0: उनके अंदर वो चीजें थी,
1: बिल्कुल
0: श्रीनाथ, ये कुछ बॉलर थे जिनके जिन्होंने अपने आप को बहुत चेंज किया है
1: बिल्कुल दिस इज
0: अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मैच, अकॉर्डिंग टू प्लेयर्स, इन्होंने अपने आप को चेंज किया है। कितली बॉल जो कहते हैं हम, जैक भाई को मैंने पहली बार डालते हुए देखा, एक दिन वो डाल रहे थे आईपीएल के अंदर, बात बता रहा हूँ, मैंने कहा जैक भाई ये क्या है, कह रहा
1: हाँ
0: देख तू मैं दिखाता हूँ तेरे को क्या है, मतलब वाकई में जब उन्होंने मैच में उन्होंने 2 आउट करे उससे, कह रहा ये बोलती है। मैंने कहा यार कमाल है, मतलब मैंने कहा आप कब से मेहनत करो, कह रहा मैं पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहा हूँ उससे,
1: देखिए तो
0: तो ये ऐसे होता है।
1: ये बात बिल्कुल सही है। आप मैं दिलशान
0: हाँ
1: से बात कर रहा था, तिलकरंदन दिलशान से, काफी टाइम पहले की बात है जब वो दिल
0: एग्जैक्टली
1: स्कूप उनका
0: हाँ
1: जो फेमस हो गया था।
0: स्कूट स्टार्ट किया था
1: हाँ, उन्होंने
0: बिल्कुल,
1: शुरू किया
0: हमारी
1: था,
0: टीम में ही थे पहली बार वो,
1: बिल्कुल
0: दिल्ली टीम में।
1: दिल्ली में थे, तो मैंने यहाँ पर मुलाकात हुई, तो मेरी मैंने उनसे पूछा कि ये स्कूप जब आपने पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे जब खेला, बड़े लेवल पे खेला, उसके पहले प्रैक्टिस कितना किया था? तो उन्होंने कहा
0: हाँ
1: कि बड़ी आई हैव प्रैक्टिस दिस फॉर 1 ईयर एवरी सिंगल डे विद द इंटेंट
0: एग्जैक्टली
1: टू प्ले दैट शॉट करेक्टली विदाउट द बॉल हिटिंग माई हेलमेट, कि यहाँ वहां ना जाए, कौन से डायरेक्शन में
0: हाँ
1: मारना है, कौन सी गेंद पे मारना है, वो सारी अलग अलग
0: बिल्कुल,
1: चीजों पर प्रैक्टिस किया, फिर मुझे
0: मैंने
1: समझ
0: भी ये
1: आया।
0: बात पूछी थी उनसे,
1: हाँ
0: जब
1: हाँ
0: उसने पहली बार एक शॉट मारा था ना, सारी हो गए कि सर पे लगी, सर पे लगी,
1: हाँ
0: बट वो जब बार बार उसने मारे, हर मैच में मारे,
1: जी
0: तो हमने, हीरो भाई ने भी पूछा, मैंने भी पूछा, तो कह रहा मैंने प्रैक्टिस करी है, 7-8 महीने इस पे प्रैक्टिस करी है, टेनिस बॉल गीली करके,
1: बिल्कुल
0: प्लास्टिक की बॉल, वो सारा उसने बताया कि मैंने 8-9 महीने इस पे मेहनत करी है, तो मेरा शॉट है ये। मैंने कहा ओ अच्छा,
1: ये है ना कि
0: तो मतलब
1: ओवरनाइट
0: इतना, मतलब किसी भी चीज को करने के लिए मेहनत में हमेशा लगती है, मैंने देखा है, आप ऐसे ही ग्रेट या नंबर वन बॉलर नहीं बनते,
1: अनडाउटेडली एंड ये मेहनत जो है
0: अगर
1: ये
0: आपको बनना है, आपको वो चीज करनी है कंटिन्यूस, तो मेहनत शॉर्टकट नहीं है इस चीज में, शॉर्टकट से आप 1 साल 1.5 साल 5-10-15-20 मैच खेल लोगे, उसके
1: बराबर,
0: बाद क्या,
1: क्या बात है।
0: इसमें अगर आपको 100-150 मैच खेलने हैं तो आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, अपना को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, सोच सही रखनी पड़ेगी।
1: ये डिसिप्लिन आपने जो शब्द यूज किया है ना, ये बहुत बहुत जबरदस्त वर्ड है, क्योंकि बचपन से ही पापा कहते थे, मम्मी कहती हैं कि डिसिप्लिन जरूरी है, और आई एम श्योर कि हर पेरेंट अपने बच्चों को कहता है, पर हर बच्चे का डिसिप्लिन ये वर्ड जो है ना, उसका समझने का तरीका अलग होता है। उनको लगता है डिसिप्लिन का मतलब है कि चलो 1 घंटा पढ़ाई कर लिया, 1 घंटा टीवी देख लिया, 1 घंटा खेल लिया, तो वैसे हमने डिवाइड कर लिया तो हो गया। पर अलग चीज़ों के लिए, अलग फोकस के लिए, अलग रिजल्ट के लिए अलग तरह का डिसिप्लिन चाहिए। और स्पोर्ट के लिए तो
0: बिल्कुल
1: आपके खाने में भी डिसिप्लिन चाहिए, सोने और उठने के टाइम में डिसिप्लिन चाहिए, बाहर जो चीज़ें आप करते हो जो डिस्ट्रैक्ट करे उसमें भी डिसिप्लिन चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात करी आपने, ये ना आप ब्रॉडकास्ट कुछ मत डालना, लेकिन जो क्वेश्चन आपने करा है और जो आपने खुद ही आंसर दिया है, ये जरूर डालना कहीं भी, इसको वायरल कर देना, मैं चाहता हूँ जितने भी यंगस्टर्स हैं ना उनको ये बात पता लगनी चाहिए कि जो आपने बात बोली है कि हर चीज छोटी छोटी चीजों पर नहीं होता, उसको कुछ टाइम तक नहीं, लंबा पीरियड करना पड़ेगा आपको, जैसे आपने कहा खाने पे आपको ध्यान देना है, इवन कि नॉर्मल लाइफ स्टाइल में, आजकल आप देख रहे हैं इतनी दिक्कतें हैं नॉर्मल लाइफ स्टाइल में, उसके लिए भी आपको
1: जी
0: डिसिप्लिन रहना, खाना पीना, वॉकिंग, जिम, नॉर्मल जिम पहले कितने लोग करते थे, मैं तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, कोविड एक्चुअली नहीं आना चाहिए था, लेकिन आने के बाद मैं इतने लोग देख रहा हूँ जिम जा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, खाना डिसिप्लिन का रहे हैं, अपना रूटीन चेकअप करा रहे हैं, ये सबसे अच्छी चीज है और ये बार बार हो रहा है, तो
1: जी
0: मैं तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि अगर आपको लंबा क्रिकेट खेलना है, आपको कुछ लोगों से अलग करना है, या लोगों से अलग दिखना है, या आपका कोई ड्रीम है, तो आपको उस ड्रीम के साथ अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और कंटिन्यूस करने पड़ेंगे, ये नहीं कि मैंने 6 महीने कर लिया यार मेरा नहीं हो रहा, नहीं ऐसे नहीं, आपको लंबा करना पड़ेगा, जब तक अगर फिर आपके जब टीम में आ जाते हो, आपका कोई अचीवमेंट आ जाती है, तो उसके बाद तो आपको और डिसिप्लिन होना पड़ेगा, टाइम पे सोना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आजकल तो मैं तो हमारे टाइम पे तो ना ट्रेनर हुआ करते थे
1: जी
0: ना स्विजी हुआ करते थे, होते थे इतने, तो अब तो आपके पास वो ऑप्शंस है, ट्रेनर अच्छे हो गए, डाइटिशियन मिल जाते हैं आपको, आपको क्या कहते हैं फिजियो अच्छे मिल जाते हैं, तो आपके पास सारे सोर्सेज हैं, तो व्हाई नॉट यू, यू कैन डू इट, प्लीज गो एंड डू इट और अचीव योर गोल्स मैन।
1: क्या बात है, ये जो चीज़ आपने कही ना कि आपके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, तो उसका फ़ायदा उठाएं
0: हाँ
1: एंड जाइए और अपना ड्रीम्स अचीव करें। अब ड्रीम अचीवमेंट की बात आई है, तो ड्रीम काफ़ी लोगों के, काफ़ी क्रिकेटर्स के जो है अचीव करवाए हैं अपने घर की लीग आईपीएल ने। बस अब 19 दिनों में आईपीएल शुरू हो रही है, इतने सारे बच्चे शायद जिनको हम जानते ही नहीं। जसप्रीत सिंह बुमराह क्लासिक एग्जाम्पल है, आईपीएल से जो है वो दुनिया में दिखे और फिर उसके बाद में भारतीय टीम में आए। हार्दिक पांड्या एज अ क्लासिक एग्जाम्पल, कितने सारे हम गिन सकते हैं अमित भैया। पर आईपीएल अब 19 दिनों में शुरू होने वाला है, आईपीएल कितना इंपॉर्टेंस रखता है आज की तारीख में भी जब इतना सारा क्रिकेट खेला जा रहा है?
0: हाँ बिल्कुल लगता है, क्योंकि पता है कि आपको वहीं से आपको यंगस्टर मिल रहे हैं, वहीं से आपको टैलेंट मिल रहा है, क्योंकि वहां पे पता है क्यों मिल रहा है, मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन खेल रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है, जो हर किसी को छक्के अभी आपको प्रूव किया, कोई ना कोई हर किसी टीम में देखे जो बेस्ट प्लेयर है
1: जी बिल्कुल,
0: कहीं ना कहीं खेलते हुए मिलेंगे आपको, आपको उनको बॉल डालनी है, अगर वहां पे आप अच्छी बॉल डालते हैं तो आप अलग से नोटिस होते हैं, इसलिए तो वहां से टैलेंट मिलता है। अब आप देखेंगे वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर आपके अगेंस्ट बैटिंग बॉलिंग डाल रहे होंगे, स्लॉग में डालेंगे, शुरू में डालेंगे, वहां पर जो बैट्समैन अच्छा करता है तो क्यों नहीं नोटिस होगा, होगा ही ना, 145-150 की प्लस की बॉलिंग डालते हैं सारे मोस्टली आजकल, तो वहां पर जो प्लेयर बॉल बैटिंग कर रहा है और इतने बड़े नाम को खेल रहा है और वहां पर रन बना रहा है, आप देखिए तो मतलब आपके अंदर वो टैलेंट है
1: बिल्कुल,
0: तो उसको ग्रूम करने के लिए फिर इंडियन टीम में आओ, इंडिया ये खेलते हैं, वहां पे आपको चेक किया जाता है, फिर वहां से आप इंडियन टीम में आते हैं, समझ रहे हैं आप, तो वो एक आईपीएल का ये सबसे बड़ा रोल होता है कि हमारी इंडियन टीम में वो फेयर खत्म कर दिया है
1: जी,
0: नामों का, फास्ट बॉलिंग का, कि यार 145 में पहले होता था कैसे खेलूंगा यार, ये कैसे होगा, इतना बड़ा नाम मुझे बॉल डाल रहा है, वो फेयरनेस खत्म हो गई है, तो टैलेंट उभर के आ रहा है, खिल के आ रहा है, तो आपको टैलेंट दिख जाता है सामने यार, कि यार ये है टैलेंट, इस पे थोड़ा मेहनत की जाए, और उसी को देख के यंगस्टर इतना बढ़ रहे हैं आगे, इतनी अच्छे अच्छे यंगस्टर आ रहे हैं, आप देखो पिछले जब मैं लास्ट सीजन खेला, मेरे को तो आधों का नाम वहां खेल के पता लगा कि यार ये लोग भी इतने अच्छे अच्छे टैलेंट है, इन पे मेहनत क्यों नहीं कर रहे लोग, या इनको मेहनत करनी चाहिए, मैं जब भी किसी यंगस्टर से मिलता था सिर्फ एक ही बात बोलता था उनको, आपके पास टैलेंट है तभी आप यहाँ पे हो, वरना ऐसे नहीं आए हो आप,
1: बिल्कुल,
0: बस आपको मॉडिफाई करना है अपने आप को, जितना मॉडिफाई करते रहोगे उतना एक एक स्टेप बढ़ते रहोगे ऊपर, तो ये मुझे लगता है आईपीएल का सबसे बड़ा रीजन जो है, जो हमारा जो फेयरनेस क्रिकेट हमारी हुई है, इवन बॉलिंग के अंदर भी और इवन बैटिंग के अंदर भी, वो आईपीएल की देन है, और इतना यंगस्टर इतने टैलेंट हमको मिल रहा है वो आईपीएल की देन है।
1: ये दो यंगस्टर्स जो आईपीएल में खेल रहे थे पिछले सीजन में, जिन्होंने बड़ा कमाल किया, उन्होंने इंडिया अंडर 19 को भी विश्व कप जिता दिया, आयुष मात्रे, वैभव सूर्यवंशी इनफैक्ट द यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर एन आईपीएल 100, 13 साल की उम्र में अगर आप बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने इतना चौड़ा होके खेलते हो, तो यानी कि आप में सही में कुछ, और वो दिखाया बाकायदा आईपीएल ने पूरी दुनिया को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो यही तो कह रहा हूँ, वो फेयरनेस खत्म हो गई ना, या 13-14 साल का बच्चा को क्या दिमाग होता है यार, कोई अगर इतना बड़ा कोई बॉलर आके बॉल डाले तो वैसे बंदा डर जाता था पहले, यार कैसे खेलूंगा ये वो, मुझे अभी तक याद है मेरा पहला आईपीएल था तो हमारी टीम में ग्लेन मैकग्रा थे
1: जी,
0: तो मतलब हम तो हमको टीवी में देखते थे यार, सचिन पाजी को बीट कर रहा है ये वो, तो जब उससे मिलना स्टार्ट हो मैंने कहा तो बंदा ही बहुत अच्छा है यार, इतना फेयर खत्म हो गया एकदम से, जब उससे मिला आके मुझे बोला कि हमने उनसे बातें थी कर रही, हमारे यंगस्टर इतने सारे प्लेयर थे, यो महेश बॉलर होता था, फास्ट बॉलर होता था, तो वो ईशान शर्मा को मैंने बात करते केकेआर से खेलते थे, तो मैंने कहा देखा वहां उस टाइम तो हमें इतनी समझ नहीं आई, लेकिन जब सीजन खत्म हो गया ना तब माइंड में बैठा कि यार क्या बड़ी चीज हो रही है, ये इतने बड़े प्लेयरों के साथ खेल रहे हैं, मतलब आने वाले टाइम पे हमने उस टाइम सोचा भी नहीं था कि आईपीएल इतनी बड़ी हो जाएगी,
1: क्या बात है।
0: तो ये एक वो है, वैभव सूर्यवंशी की आपने बात करा, अंडर 19 वर्ल्ड कप में 175 बना के उन्होंने मैच
1: जीता,
0: तो फिर वहीं से खत्म हो गया ना, मतलब आईपीएल में आप इतने बड़े बड़े प्लेयरों को खेल रहे हो इतने बड़े, तो फिर खत्म हो गया वो, आपको सिर्फ मतलब वही मैं कहता हूँ फेयरनेस तो निकल गई, टैलेंट भी है, आप अपने आप को कैसे मॉडिफाई करते हो और कैसे आगे बढ़ना है आप, तो यही एक रीजन है कि आप परफॉर्म करते रहो और अच्छे अच्छे स्टेज पे परफॉर्म करते रहो, अपना स्टेप बढ़ाते रहो धीरे धीरे।
1: अब मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछूंगा, आईपीएल शुरू होने वाला है,
0: शायद वो मिर्ची वाला सवाल का जवाब मैंने सही दिया होगा,
1: आपने वो बिल्कुल दे दिया। मैं आपको आईपीएल के बारे में पूछूंगा, ऑब्वियसली आपने दिल्ली के लिए खेला, एलएसजी के लिए भी आप साथ में थे, कौन सी टीम आपको लगता है अब जो पूरा मेकअप हुआ है, नए नए प्लेयर्स आए हैं टीमों में, कौन सी टीम आपको लगता है कि दावेदारी रखती है इस सीजन में आईपीएल टाइटल उठाने की?
0: देखिए मेरे को तो एक केकेआर लगती है, जो अच्छी टीम है, जो इवन की मुंबई इंडियंस
1: जी
0: दूसरी वो हो गई लगती है। मतलब देखिए T20 के अंदर ना आप ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते,
1: बराबर
0: क्योंकि तो आपको पता है कि एक प्लेयर कभी भी गेम चेंज कर सकता है। तो मैं ऐसे बोलना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन लेकिन यही है कि मुझे लगता है कि यार सभी टीमें अच्छी हैं। फिर मैं एक का नाम लूंगा, दूसरा कहेगा यार हमने इतनी मेहनत से 100-120 करोड़ रुपए लगाए, हमारे को नहीं बोल रहा है बंदा। तो मैं तो यही कहूंगा सारी टीमें अच्छी हैं, बट हाँ टैलेंट वाइज यंग जो टैलेंट आ रहा है
1: जी
0: आईपीएल को देख के, हमारा टैलेंट बहुत ज्यादा उभर रहा है, बहुत नया नया टैलेंट आ रहा है हर साल। और आईपीएल के अंदर मतलब T20 के अंदर हमेशा ही होता है, एक प्लेयर कभी भी गेम चेंज कर देता है, और जितने भी प्लेयर वहां पे आ रहे हैं सभी टैलेंटेड है, तभी वो आईपीएल के अंदर आ रहे हैं। और हमें उसका फायदा ये हो रहा है कि हमारी इंडियन टीम में वो फायदा हो रहा है, ऐड हो रही है वो टैलेंटेड।
1: अनडाउटेडली टैलेंट ऐड हो रही है, प्लस फिर आप जैसे प्लेयर्स, आप जैसे गेम के जो परखने वाले हैं, वो अपना ओपिनियंस देते हैं, अपने थॉट्स देते हैं. आपकी तरफ से मेरे मुझे मुझे यकीन है कि जो जितने लोग सुन रहे हैं हमें, उनमें से काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो शायद क्रिकेट को प्रेम करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, या उनके बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं. तो लर्निंग्स आपसे भी काफ़ी सारी मिलती हैं उनसे जब आप हमसे बात करते हैं. तो अमित भैया, आई वॉन्ट टू से थैंक यू वंस अगेन फॉर कीपिंग योर प्रॉमिस कि इंडिया की जीत के बाद साथ में फिर से बात करेंगे.
0: बिल्कुल, अगर मैं प्रॉमिस करता हूँ तो निभाता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ।
1: क्या
0: थैंक
1: बात है, थैंक यू सो मच अमित भैया, बहुत मजा आया आपसे बात करके.
0: यू सर, थैंक यू, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करे आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का।
1: थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. यही ऐसी मुलाकात जो है वो करते रहेंगे. अभी तो आईपीएल का लंबा चौड़ा सीजन आने वाला है, तो फिर से कभी टाइम
0: जी
1: मिला तो
0: बिल्कुल,
1: आपको तो जरूर हमारे साथ बताइएगा.
0: 100% जब भी मौका लगेगा विल डू इट, नो प्रॉब्लम।
1: थैंक यू सो मच.
0: पर प्रॉमिस नहीं करता, मे बी आई एम बिजी समवेयर, बट इफ आई एम फ्री आई 100% विल मीट।
1: दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट. आपका प्यार ही हमें चाहिए और क्या.
0: एनी टाइम,
1: थैंक
0: और
1: यू,
0: मुझे भी आपका प्यार,
1: ऑलवेज ऑलवेज अमित भैया, थैंक यू सो मच,
0: ऑलवेज देयर। ओके टेक केयर ब्रदर,
1: थैंक यू,
0: ऑल द बेस्ट।
1: Thank you so much, Amit Mishra, the Indian leggy who had won the 2013 ICC Champions Trophy, played the IPL at the highest level, and what an incredible human being that he is, spending so much time again today with us. Well, inki baatein karenge, inke saath mein baatein karenge, aur
2: this IPL is Talk 100.3.
3: Henna Speedy Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. Henna Speedy Hair Color, your quick fix solution for changing back the lost colors of your hair in just 7 minutes. Talk 100.3. You're listening to the best of day.
4: Well, joining us in conversation is Caroline Yaffe. She is here to, going to be talking to us about all things that we need to know. And she is a psychiatrist.
5: The times are as such. Now, when we are talking about every person is very different when it comes to, sharing out, pouring out what you feel like, you're heavy in your heart, and quite difficult when it comes to, you know, sharing those moments where you feel so vulnerable. What would you say to people like that?
6: Well, you know, look, I think right now it's a very anxiety-provoking time for everybody. And I think, you know, one of the biggest pieces that I've been giving advice about, as far as, you know, we're very curious right now as to what's going on, which is incredibly normal. But I also think it's very important to limit our watching and what we're looking on online, and just in light of all the events that are going on around us, I think it's very important to just really stick to reputable resources and not try to get all our information from Facebook and Instagram, because there's a lot out there that's unverified.
4: Right.
6: Anything can go on social media. So I think it's just very careful. Just be very mindful about what and who you are listening to.
4: Right, absolutely. Caroline, if it's okay for you to also talk to us about, external news. Now, a lot of us maybe would be reeling under anxiety and stress, right? And the external news becomes a trigger point to aggravate these thoughts. I did do a little bit of reading that says 90-second technique of deep breathing to manage sudden spikes in fear helps reduce the stress levels.
6: Absolutely. And actually, deep breathing is wonderful because what it does is it automatically regulates your nervous system. So when we start to see or hear things around us that create anxiety, our nervous system activates. And, you know, that actually lifts our, you know, cortisol levels. So we just want to make sure that we're staying as calm as possible. And can I just give a very brief deep breathing exercise
4: for
6: everybody out there?
5: That would be great, Caroline. Yeah.
6: Okay, great. But I want everybody to take a deep breath, and I want them to hold it in for 4 seconds.
5: Four.
6: And I want them, I'm sorry, take a deep breath through your nose.
5: Done.
6: 4 seconds in.
5: Holding.
6: Holding for 7 seconds.
5: Exhale.
6: 4 seconds. Deep breathe in. 4 seconds. Hold your breath for 7 seconds. And then just breathe out as much as you can till you have no breath left.
4: Wow. All right.
5: What is the ideal to exhale, Caroline?
6: Just
5: 4 seconds?
6: I just like to give a deep breath out.
5: Okay.
6: Until I have no breath left to give.
5: So breathe in 4 seconds and then hold for 7 seconds and then
6: exactly
5: exhale as much as you can.
6: As you can. It's a great grounding exercise.
5: Magical.
4: You know,
5: and I think
4: two important questions, Caroline, coming in.
6: Sure.
4: One is what happens when I feel lonely and is overthinking bad, right? Because there are times that you keep thinking and thinking and thinking and you've probably cooked up an entire situation in your head without realizing ground reality.
6: There's no doubt. But I want to point something out. You know, our anxiety right now, it's very natural. And, you know, I think that people try so hard to kind of move away from that. I don't want to feel anxious. Right now, we're all feeling anxious.
4: Mm-hmm.
6: It's okay. I think what to be mindful of is if you are exceeding the normal level, the normal level where you're having panic attacks, and that's where you want to go into the deep breathing.
4: What do panic attacks look like, Caroline? If you can just explain that to us, because a lot of us don't even realize that we are under so much of stress that
6: panic
4: this could be an episode.
6: Can actually manifest physically. You can feel like your heart is beating very fast.
4: Mm.
6: Your head will start to hurt. You can have stomach pain. It's just a wave of fear.
5: Sure.
4: But there are also times that you feel that no matter what you do, you can never really succeed. It's always you bearing the brunt of it all, no matter how good you could be, even or how productive you could be at work as well, right? So how do you kind of challenge these thoughts and channelize the inner you to get beyond these barricades and see the bigger picture?
6: Well, can I just say one thing? Excuse me, I have a cold
5: here.
6: You know, we're all in these are very unusual circumstances that we're all experiencing.
5: Sure.
6: But I want everybody to remember we're not here alone.
5: Mm.
6: We're all in this together.
5: That's right. That's so true.
6: You know, we're all in this together. The anxiety is very normal. The uncertainty is very normal. Most of us are expats here and we're away from home. We also can add another level of anxiety. We also, I will attest to this personally, have our families constantly calling us, wanting information, and wanting information that we ourselves don't have,
5: mm-hmm.
6: which can create a whole other level of anxiety.
5: Mm-hmm.
4: Well,
6: but I want us to remember that we're all in this together. None of us are here alone. And I want to just advise everybody, reach out to your support system.
5: And, you know, Caroline, different people have different means of de-stressing themselves. Some people like to talk it out. Some people like to go in their caves and, you know, spend some time
6: yes.
5: there. Some people perhaps like to listen to some music. Some go to the gym. If you can, you know, talk about some of these ways of calming yourself down and easing out and be easy on yourself, that would be great, because we always feel that it's always, you know, when we are talking it out to somebody, that's the way out, or perhaps breathing exercises. But different ideas and solutions suit different people.
6: Well, can I just give you one piece of advice that I always give to people?
5: Sure.
6: When I talk about having a problem, I like when people talk about it, because when you talk about it, you're actually slicing the problem in half because you're sharing it.
5: Okay.
6: So I really think, I know that not everybody is as vocal as I am. I know that people tend to keep things in quiet, but half a problem cuts the problem in half. Am I making sense here?
4: Absolutely. I'm going to latch on to what you've just said, Caroline, because there is something known as a worry time, and apparently a window should be, you know, should be drawn in place for individuals, which means a 15 to 30 minute window daily to differentiate between hypothetical worries and real worries as well.
6: I call that worry time.
4: You call that worry time, right? All right. Yeah. So could you talk to us a little bit about, you know, what specific techniques?
6: If you need to give yourself, block off a chunk of time, and if you need to give yourself 10 minutes to worry about something, that's okay. Go to town. But make sure that you stop that clock. And after that 10 minutes is over, I want you to try to move on to another activity or distraction. But that's okay. You don't have to talk. See, this is the thing. I think we try to talk ourselves out of our feelings and out of our natural worry.
5: Mm-hmm.
6: And these are natural concerns. It's okay.
4: You know, when you talk to me about internal stability, again, that is something that the external factors don't play too much of a role. So are there different, you know, probably mini routines or maybe routines that you'd recommend to the individuals that come to you to ensure that from within you feel stabilized and you feel the sense of grounded?
6: Well, again, I like I said, I'm a very verbal person.
5: Mm.
6: So I am somebody where it helps me to talk about my problem and to share the problem. And that makes me feel connected.
5: Sure.
6: And it makes me feel grounded because you feel supported. Talk about your worries. Talk to your family. Talk to your friends. Keep in contact with people at home. That's very helpful. And reassure them as you're reassuring yourself that you're okay and that we're okay and that we're not here alone and that we have each other. And again, I think worry time is an excellent way to kind of, you know, deal with our fear, but put a time limit on it. Grounding exercises. Deep breathing, like I said, that helps regulate your nervous system, and that's a proven statistic.
5: Mm-hmm.
6: Meditation is wonderful. Try to distract yourself. And can I just give my personal biggest, my personal thing to do is
4: please,
6: to stay off 24/7 media.
5: Wow.
6: We don't know what we're watching. We think we know.
5: Mm.
6: And just make sure that everything that you're listening to is a reputable government entity.
5: Caroline, what about people from the media? We have to consume.
6: Oh, I know.
5: We have
6: That's
5: to be
6: a
5: made
6: very
5: of
6: good question.
5: Very different.
6: But I would assume that you guys are probably the ones that are getting all the accurate information being
5: sure.
6: in the media.
5: Indeed. And so. Because it's our profession, it comes easy to us. Just like you mentioned that communication comes easy to you. You're not just somebody who can communicate easily, but also you're a psychologist.
6: Yes.
5: What do you have to say about these helplines? We have heard them around the world, especially on the Western side of the world. There is a lot of importance given. Whenever there is a stressful news below that, they always mention if you're feeling heavy, if you're feeling stressed, if you're feeling suicidal, these are the numbers. Get in touch with people. We just mentioned one right here in UAE, which is 800 Sakina. Can you walk us through what these helplines are all about? How we can make the most of them while they're available for us 24/7, Caroline?
6: Well, again, I just want to reiterate, please make sure that this is a reputable helpline that you are reaching out to.
5: Sure.
6: Secondly, I think helplines, I preach helplines.
5: Right.
6: I think it's great. Not all of us have the natural resources that other people have. Not everybody has a family around him. There are people here that are by themselves.
5: Mm-hmm.
6: And I think just having a voice and somebody to speak to on the other end of the phone can be a tremendous support.
4: Absolutely. Caroline, and now also let's talk to you a little bit about this, right? For example, say I am to get onto these hotlines or I am to get in conversation with a psychiatrist.
6: Sure, sure.
4: What are those conversations that I can bring forward? How do I initiate those conversations without thinking that the opposite person might think a little bit low about me already, right?
6: Well, first of all, I want to tell you something. Anybody that is working for these hotlines, they're professional and non-judgmental.
5: Fantastic.
6: I want somebody to remember this is a non-judgmental space.
5: Okay.
6: They're there because they want to be. And they're there because they want to help you.
4: But how do you initiate a conversation? How do I start a conversation with an expert?
5: Perhaps they
6: what
5: must
6: about,
5: be
6: I
5: they
6: need
5: ask
6: help.
5: Questions.
6: I feel scared.
5: Oh. Okay.
6: I'd like to speak to somebody.
5: Mm-hmm.
6: I don't have anybody to ask. Can you help me find information? Can you just help me sort out my feelings?
5: Mm-hmm.
6: Look at it as if you're talking to a friend.
5: Yeah. Oh. And share your mind and, give voice to perhaps your feelings. And how much of it is helpful, Caroline? What is your experience when it comes to, calling these helplines? And what is the statistics, perhaps, if you have
6: well,
5: any?
6: Well, I think, first of all, I'm from the United States, so... I'm a very big advocate for, suicide hotline, the Samaritans, Samaritines. These are some organizations that are in the United States that I've worked with personally.
5: Okay.
6: And I'm a big advocate for them because I think that they're, again, having somebody to reach out to is paramount.
5: Sure.
6: We don't all have support. We don't all have the natural support that we should.
5: Mm-hmm.
4: Well, also, before we kind of end this conversation, Caroline, let's ask you about three important characteristics so that you could differentiate between burnout, anxiety, and stress, right? They all seem similar. They all may have similar characteristics, but how can I differentiate one from another?
6: Well, burnout, anxiety, and stress. I just want to say what's going on today in the world, I think this is just really much more anxiety than burnout.
5: Mm.
6: Okay, because like I said, these are unusual circumstances. Burnout is when, we've really overdone it.
5: Sure.
6: Burnout is kind of something that would happen when, we're overworked.
5: Your patience runs out.
6: Yes, exactly. Thank you. That's very good. Well said.
5: And of course, before we let you go, you are a professional. And at times, when nothing else works, Caroline, you want to reach out to seek help from professionals, psychologists, psychiatrists. What is the best way to approach them? Is it more of, word of mouth or perhaps checking out online? What is the best way?
6: Well, certainly. There's certainly many ways to find a therapist. I personally, I'm with Medcare Kamali Clinic.
5: Mm-hmm.
6: And we have, just in recent, in light of recent events, we are here for our clients. We're here for the community.
5: Mm-hmm.
6: And I really just want to encourage anybody to reach out to us.
4: Well, thank you very, very much, Caroline Yaffe. She is our psychiatrist over here, right here, talking to us about all things how to stay
6: focused. Oh, thank you so much. Thank you for reaching out to me.
3: The best of Daybreak on Talk 100.3.

0: couple of tail enders coming in. कोशिश करनी पड़ेगी सिंगल लेके स्ट्राइक दे रविंद्र जडेजा को और देन रविंद्र जडेजा विल हैव टू स्विंग हिज बैट ट्राई टू कनेक्ट एंड गेट वन और टू बाउंड्रीज बिफोर द 20th ओवर फिनिशेस. साकिब हुसैन की अगर बात करें ही हैज़ रियली रियली बीन अ गुड फाइंड फॉर SRH दिस सीजन. बोल्स इन दोज डेथ ओवर्स, बोल्स इन द मिडल ऑफ इनिंग्स एज वेल. अच्छे स्लोअर वंस हैं उनके पास, अच्छे यॉर्कर्स हैं. कम्स फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन बिहार एंड हैज़ मेड इट बिग इन टू द IPL. इस मैच में हालांकि थोड़े एक्सपेंसिव रहे, 50 से ऊपर रन उनको पड़ चुके हैं अभी तक, आखिरी ओवर उनका ये चल रहा है, बट ओवरऑल ही इज़ हैड अ गुड सीज़न. और इस मैच की अगर बात करें, राजस्थान रॉयल्स इज़ लुकिंग गुड. दे वुड हैव वांटेड मे बी 10 और 15 रन्स मोर देन व्हाट दे आर एट राइट नाउ. 240 for 8 इन 19.2 इम्पैक्ट सब का यहाँ पर इशारा. सो एक सब्स्टिट्यूट जो है वो आ रहे हैं, यशस्वी जायसवाल को बाहर किया गया है एज अ सब आउट और सुशांत मिश्रा को लाया गया है. तो ये दे आर गेटिंग सम गुड फायर पावर गेटिंग एडेड टू देयर बॉलिंग यूनिट एंड एज एक्सपेक्टेड एक बॉलर तो चाहिए था एज अ सब. अगली गेंद इस बार करेंगे साकिब हुसैन, एक और स्लोअर डिलीवरी, बल्ला पहले घूम गया, गेंद बाद में आई, चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई भी रन लेने का मौका नहीं मिला. एक डॉट डिलीवरी, अ वेलकम डॉट डिलीवरी फॉर SRH.
1: एंड For all the praise Saqib Hussain and the effort that he's put tonight, certainly it would be called a super delivery.
2: Super delivery brought to you by Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Ishan Kishan, he's got one glove off and he's just waiting to have a good throw at the stumps. Sushant Mishra, he wanted to steal a single over there but nothing doing. And once again Hussain taking the pace off this delivery and the ball staying a bit low. Sushant trying to go across the line over here, makes no connection whatsoever. It's gone into the hands of Ishan Kishan and once again that's a dot ball. Rajasthan Royals have reached the 240 mark. They've lost 8 wickets in the process, but the last few wickets that have fallen have all been self-inflicted and a few loose shots that have been played. There's a second last delivery of the over coming in. Sushant, he moves across the stumps and then just plays it square to the wicket towards point, and that will certainly be a perfect drive.
2: The perfect drive.
3: Brought to you by Trade 24/7. Trade smarter, trade better.
1: 241 for 8 are the Rajasthan Royals. And the last ball coming up, Jadeja is on strike. Ideal way to finish this would be a 6 into the stands.
0: For Rajasthan Royals. For SRH, it will be a wicket. Let's see what happens. Step out kiya is game ko outside the off stump. Ye game thi wide gayi thi. Wicket keeper ke haathon mein throw mara Ishan Kishan ne. Aur throw stumps par laga nahi. Baller Saqib Hussain bhi follow through mein throw nahi rok paaye. Overthrow yahaan par ho gayi hai. To jahaan par koi bhi run nahi milna chahiye tha, wahaan mil gaye hain do run. Bye ke roop mein. To do byes ke saath 20 over mein Rajasthan Royals ne banaye 243 for 8 wickets. वैभव सूर्यवंशी की जबरदस्त बल्लेबाजी, टॉप द ऑर्डर, उसके बाद ध्रुव जुरेल के 50 रन एंड देन द टेल एंडर्स एंड द मिडल ऑर्डर आल्सो गेटिंग इन सम रन्स इन बिट्स एंड पीसेस. 243 फॉर 8 इज व्हाट राजस्थान रॉयल्स कुड मस्टर इन देयर 20 ओवर्स और वी विल बी बैक ब्रिंगिंग यू द लाइव कवरेज फॉर द चेज.
2: Talk 100.3 Ball by Ball.
3: Brought to you by Tanishq. Shop from a store or shop online at tanishq.ae. Zulekha Hospital. Your health matters.
4: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month.
5: Don't forget to pack peace of mind. This is Alfred and travel insurance from insurancemarket.ae. 800 Alfred. Insurancemarket.ae.
6: In emergencies, seconds count. Trust the 24/7 expert care at Zulekha Hospital for adult and pediatric emergencies. Call 600-52-442.
7: Royal Regency Suites in Business Bay by Alseeb Developers. With Italian crafted interiors where every suite tells a different story.
8: Hi, I'm Neha. Honestly, मुझे old gold exchange करने में हमेशा थोड़ी hesitation होती है. मेरा concern था, क्या मुझे correct value मिलेगा? कहीं hidden deductions तो नहीं होंगे? मैंने Tanishq try किया. Purity check हुई and everything was explained. No hidden charges. No last minute surprises. I got 20 dirhams extra per gram on exchange of my old gold. And I bought apne liye beautiful diamond jewelry bhi khareedi.
2: Visit your nearest Tanishq store today.
5: Dubai. Get ready for the biggest Punjabi entertainment night of the year. Humble Motion Pictures presents Carry On Jatta 4. Meet the star cast of the highly anticipated family comedy Carry On Jatta 4 featuring Gippy Grewal, Sargun Mehta, Binu Tillon and Karamjeet Anmol live in Dubai on 29th May. Catch them at Global Village main stage from 7 p.m. onwards and join the exclusive after party at Opus Club Dubai from 11 p.m. onwards. Powered by Royal Skin Cosmetic Clinic, Celebrity Nation, Ladies Fusion and Big 106.2. Tour organized by Dream Advertising and Big Bash Squad.
9: All the action, ball by ball. This is Talk 100.3.

0: LBW. Both batters are confused about taking a leg by single. लेकिन इन सब के बीच में काफ़ी कुछ यहाँ हो गया. गेंद रिवर्स हिट करने की कोशिश की थी और गेंद लगी पैड पर. ज़ोरदार अपील हुई. दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के लिए यस नो किया. रन फिर भी नहीं लिया और हो गया है यहाँ पर एक DRS के लिए रेफर. सो देखना होगा कि ये आउट मिलता है या नहीं. ओरिजिनल डिसीजन इज नॉट आउट के नज़दीकी मामला हो सकता है क्योंकि रिवर्स हिट लगाने के लिए काफ़ी शफल होकर आ गए थे स्टंप्स पे. गेंद जो है सीधी रही, ज़्यादा टर्न नहीं हुई. इट वॉज अ बॉल विच वॉज रेगुलेशन लेग स्पिन ज़्यादा, लेकिन टर्न नहीं हुआ गेंद. ऐसा लग रहा है कि लेग स्टंप शायद छोड़ रहा हो. बट नील, इफ दे गो फॉर अ स्विच हिट नॉट अ रिवर्स स्वीप, तो लेग स्टंप कौन सा माना जाएगा, ऑफ स्टंप या फिर लेग स्टंप?
1: वेल, इफ ही हैजंट चेंज द ग्रिप बिफोर द डिलीवरी देन इट्स अ रेगुलेशन लेग स्टंप. बट इफ ही चेंज द ग्रिप before the delivery has happened, then the change happens. Yes, okay, pitching in line, impact in line, and that one is hitting the stumps. What a wicket there. What an inspirational change from Yashraj Punja. He bowled the top spinner, the seam going upright, the ball pitching and straightening after pitching. There was this little extra bounce that changed everything that Klaassen was thinking about. If it was the leg break, it would have gone away from the stump, so that wouldn't have been any issue. He probably would have been able to connect it too. But that seam position upright when he delivered the ball pitched, and because it hit the seam, it bounced a little bit extra. And that definitely got the decision in their opinion. I can tell you one thing, that little change of bringing Yashraj Punja, I mentioned right outside the power play, was really, really good because he knows how to take the pace away and has a few varieties. A tall lad, and he's got the dangerous man. Klaassen is out.
2: How's that? Brought to you by GWM Premium SUVs, exclusively distributed by Al Nabuda Group.
0: Bada wicket yahan par. Henrik Klaassen gaye hain wapis, aur the danger man is now back in the hut. RR is into the game. ये game अब मजबूती से RR के पकड़ में है. 5 विकेट उन्होंने निकाल दिए हैं. 100 रन भी अभी बने नहीं हैं, जबकि जीतने के लिए चाहिए 244. बहुत सारे रन बनाने हैं और एक अच्छे रन रेट पे बनाने हैं हैदराबाद को. यहाँ से अप हिल टास्क है ये. इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम. ऑल द मेन बैटर्स आर बैक इन द हट. RR इज ओवर द मून. If they win this game, they will have to play with GT, Gujarat Titans. और वो वाला मैच भी अगर जीतते हैं तो फिर फाइनल में RCB के साथ खेलने का मौका मिलेगा. सलील बैटिंग करने आए हैं. इम्पैक्ट सब. अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर. ये गेंद इसको किया है फ्रंट फुट पर, स्लैश टुवर्ड्स द ऑफ साइड. एक स्क्वेयर ड्राइव था ये और बॉल गई है डीप पॉइंट की रीजन में. एक अच्छा थ्रो नहीं था, दिस वॉज अ लूज थ्रो. विकेट कीपर के सर के ऊपर से ये थ्रो चला गया. वेरी वेरी रेयर टू सी रविंद्र जडेजा थ्रोइंग इन फ्रॉम द डीप एंड द थ्रो गोज फॉर एन ओवर थ्रो सिंगल.
1: यार ये रविंद्र जडेजा की फील्डिंग जो है ना, थोड़ी सी आज इस साल थोड़ी सी वियर्ड रही है. यू नो, चाहे उनकी आउट फील्डिंग हो, चाहे इन फील्डिंग हो, कैचेस ड्रॉप करना हो, हमने रविंद्र जडेजा को ऐसा नहीं देखा है. मेनी अ टाइम्स वी हैव सीन हिम pull out miraculous saves, take catches where no one would have believed that this is going to be a catch. But in this season, wearing the pink, we've seen him do sillier things in the outfield. I remember at point when he was standing, he dropped a regulation catch in one of the games. I can't recollect which game, but it was a very, very regulation catch that he dropped. Today at the boundary line, that was a half a chance, yes. But then this is exactly what you expect from Ravindra Jadeja. The other day, two fielders coming in close and dropping the catch. Ravindra Jadeja was one of them. So, there have been, you know, multiple times where Ravindra Jadeja has looked wanting or probably been on the not so wow end of the fielding. Meanwhile, it's going to be Nitish Kumar ready to face the fresh over. Slightly back of the length, outside off and cut it beautifully. This ball is racing towards the cover region. 4 runs.
2: Boundary and beyond.
3: Brought to you by Carfair Group, a legacy of trusted mobility solutions. Al Seeb Developers, redefining Dubai living.

0: सांपे रुक गया, आगे बढ़। रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो मां,
0: चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।
1: सारे गामा, हाँ हाँ मां सा।